जिस घरे है पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की राह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दे मुझे अबर आए मरण काल का त्रास न मरिया है।

दुठ चाल चवस कर न कोई, एक बार जनत मैं संभाराओ, काल पास्ते ताहू बाराओ, जिन नर नाम तिहारु कहा, दर्द दुष्ट दुख दे रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहु उबारी, सर्व ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माताओ, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राताओ, किल बिक सकल देह को हरताओ, दुष्ट दुखियन को छ करता।

पयो जिसका सबसे आधारो जेको खावे जेको पहुंचाए तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित डाको और तारो तम संसार चरण लग दरिया सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनू जोग कीतोई मैं निर्गुणिया रे को गुण नाही आपे तरस पियो तरस पिया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलाए ता जीवा तर मन थी बै हरिया तरस पिया मेहरा मत होई सतगुर।

कचरी छंद अजाय अलाय भय बै भुआ जुआ नस कस गंज पंज अलख पख काल दयाल अलेख भेख अनाम काम गह टह नाथे परमाथे अजोनी मोनि न रागे न रंगे न रूपे न देखे अकर्म भरम गंजे अलेखे भुजंग प्रयात शमदे नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकाम विभूते समस्तल स्वरूपे ओ कर्म प्रणासी सो धर्म विभूते सदा सत अनंतरम प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय विगनीमे हरियं करियं करी मुल रहिमे चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भवं सर्वदा सर्वजुगते।

काहू लख्यो हर अवाती दिशा में है काहू पछाह को शीशन वायो को बतानक पूजत है पासो को मृतानक पूजन तायो को क्रिया उर जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो को बतानक पूजत है पासो को मृतानक पूजन तायो को क्रिया उर जो सब ही जागो

संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जान सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे ठाकुर तुम पहर

0: रंग प्रंग नेक ना जपन करतबा जी अंदर जी सबकी जान ला सबके तेरे वस तेरा कर पला तेरे कारण अंद वधाई तुझ घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जी अंदर जी सबकी जान ला सबके तेरे वस तेरा कर पला तेरे कारण अंद वधाई तुझ घर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दास दया के बिनवता
1: लोक पौन गुरु पानी पिता माता तृत महत दिवस रात दाई दाया पिता माता तृत महत दिवस रात दाई दाया कमी अपनी आया आते

ओंकार सतगुर प्रसाद राम राम राम राम जाप कल कलेश लोभ मोह बिनस जाए अहंता प्राओ आप त्याग संत चरण लाग मन पवित्र जाए पाप नानक बारक कछु न जाने राखन को प्रमाई बाप प्रभाती महला पंजमा चरण कमल सरन टेक ऊच मूच बेअंत ठाकुर सर्व ऊपर तुही एक राव प्राण आधार दुख विदार दैन हार बुद्ध विवेक नमस्कार रखन हार मन आराध प्रभु मेक संतरे

जो गुरु गुरु वैनस जपै दास पट बिरद करै जो गुरु नाम रिद मैं त्रै सौ जन्म मरण तो थेरा है गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझना आवै गुरबिन सुरतना सिद्ध गुरु बिन मुक्तन पावै गुर कर सच विचार गुरु कर दे मन मेरे गुरु कर शब्द सपन अगन कटे सब तेरे गुरु नैन बैन गुरु गुरु करो गुरु सत कब नाल कै जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते अगे संसार मैं

तिन जन लागा पाओ गुरसब दी हर मन मसे माया की पुख जाए सेजन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए नानक होर पातशाहियां कूड़ियां ना वरते पातशाह ज्यों पुरख कर भगति नार है अत लोचे भगति पाए बहु रस सारणे सवार दे खटरस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामे चितलाए मन तन धन आगे राख्या सर वेचया गुर आगै जाए ऐ भगति भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रावे प्रवाह है कित खादे तपताए सतगुर के भाणे जो चलै तिबतासे हर गुण गाए तन तन कल जुग नानका जे चलै सतगुरु पाए सतगुरु ना सेवियो सुध ना रखियो उरतार तिग तिना का जीविया किताए संसार गुरमति पो मन पवै ता हर रस लगे प्यार नाउ मिलै तुर लिख्या जन नानक पार उतार माया मोह जग भरमिया घर मुसै खबर न कोय काम क्रोध मन हिर लिया मनमुख अंधा लोए ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमुख जागै सोए नाम रतन पुरगासै मन तन निर्मल होए नाम हीन नकटे फिरै बिन नामे बै रोए नानक जो तुरकरते लिखिया सो मिट न सकै कोए गुरमुखा हर तन खटिया गुर के शब्द विचार नाम पदार्थ पाया तुट परे भंडार हर गुरबाणी उचरे अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज मन चढ़िया दसवें आकाश तिथै ऊंग न भुख हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोरड़ा सब गल आए पाए एक उपजै एक बिनस जाए हुक्मे आवै जाए जमन मरण न चुकी रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पुआय करना कुछ न जाए ज्यो जिनको करता कृपा धारियन तिन्ना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर्जी व्यासै सुभाए नानक भक्ति रत्या हर हर नाम समाए मनमुख चंचल मातै अंतर बहुत चतराए कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए न पाए पुन दान जो बीदे सत धरो राय कह जाए मिन सतगुरु जमकाल न छोड़े दूजे पाए खुआए जोबन जांदा नदर न आवे जर पहुंचे मर जाए उत कलत मोहे तै अंत बेली को ना सखाई सतगुर सेवे सो सुख पाए नाओ वसै मन आई नानक से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई मनमुख नाम ना चेतनी बिन नाम है दुख रोए आत्मा राम ना पुजनी दूजे क्यों सुख होए हमें अंतर मैल है शब्द न काटै धोए नानक बिन नाम है मैलिया मुए जन्म पदार्थ खोए मनमुख बोले अंधले तिसमें अग्नि का वास बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करें प्रगास ओना अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुर बचन करें आवास गुर बचन न करें विसास ज्ञानी अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विगास हर ज्ञानिया की रखदा हूँ सद बलिहारी तास गुरमुख जो हर सेम दे जन नानक ताका दास माया भयंगम सर्प है जग घेरिया बिख खाए बिख का मारन हर नाम है गुर शब्द गुर गुर गरड़ शब्द मुख पाए जन को पूर्व लिख्या तन सतगुर मिलिया आए मिल सतगुर निर्मल होया बिखो में गया बिलाए गुरमुखा के मुख उजले हर दरगाह शोभा पाए जन नानक सदा कुरबान तिन जो चलने सतगुर पाए सतगुरु पुरख निरवैर है नित हिरदे हर लिव लाए निरवैर है नाल वैर रचाइंदा अपने घर लुकी लाए अंतर क्रोध अहंकार है अंतर जलै सदा दुख पाए कूड़ बोल बोल नित भौंक दे बिखा दे दूजे पाए बिख माया कारण भरम दे बिख फिर घर घर पत गवाए वेसवा केरे पूत ज्यों पिता नाम तिस जाए हर हर नाम ना चेतनी करते आप खुआए हर गुरमुख कृपा धारियन जन मिछड़े आप मिलाए जन नानक तिस बलहार ने चले सतगुर पाए जो सतगुर लागे पाए नाम लागे से उभरे बिन नामे जम पुर जाए नानक बिन नामे सुख नहीं आए गए पछताए
ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਉਤਰ ਗਏ ਤਾਮਨ ਪਿਆ ਆਨੰਦ ਗੁਰਪੁਰ

अनदन सेवा करत समाए, अंतर सतगुर गुरु सब पूजै, सतगुर का दर्श देखै सब आए। मनिया सतगुर परम विचारी, जित मिलिया तिसना भुख सब जाए। हों सदा सदा बलहारी, गुर अपने जो प्रभु सच्चा दे मिलाए। नानक करम पाया तिन सच्चा जोग चरणी, गुर चरणी लगे आए। जिन प्रिया सोने से सज्जन मैं नाल, अंतर बारों पिरा पी हिरदे रखा समार। जिन्ना एक मन एक चित्त आया, सतगुर सोच तलाए। तिन की दुख भुखो में बड़ा रोग गया, निर्दोग भय लवलाए। गुण गावे गुण उचरै, गुण मै समय समाए। नानक गुर पूरे ते पाया, सहज मिलिया प्रभ आए। मनमुख माया मोह है, नाम न लगे प्यार। कूड़ कमावै कूड़ संग्रह, कूड़ करै आहार। निख माया तन संच मरै, अंत होए सवसार। कर्म धरम सो संजम करै, अंतर लोभ विकार। नानक मनमुख जे कमावै, सो थाए ना पवै दरगा होए खुआर। सबना रागा विसो भला पाए, जिस वस्या मन आए। राग नाव सच सचै कीमत कही न जाए, रागै ना दै बारा इन्नी हुक्म ना बुझै जाए। नानक हुक्मै बुझै तिन्ना रास होए, सतगुर ते सोजी पाए। साबक सतिस्ते होया, ज्यों तिसै दी रजाए। सतगुर विच अमृत नाम है, अमृत कहै कहाए। गुरमति नाम निर्मलो, निर्मल नाम त्याए। अमृत बाणी तातै गुरमुख सै मन आए। हृदय कमन प्रगासै ज्योति ज्योत मिलाए। नानक सतगुर तिनको मेले, उन जिन तुर मस्तक भाग लिखाए। अंदर तिसना अग है, मनमुख भुख न जाए। मोह कुटंब सब कूड़ है, कूड़ रिया लपटाए। अनदन चिंता चिंत वै, चिंता बदा जाए। जमन मरना चुके हो मैं कर्म कमाए। गुर सुनाई उबरे नानक ले छाए। सतगुर पुरख हर ध्याए दा, सतसंगत सतगुर पाए। सतसंग सतगुर सेव दे, हर मेले गुर मिलाए। ए भोजल जगत संसार है, गुर बोध नाम तराए। गुर सिखी पाणा मन्या, गुर पूरा पार लंघाए। गुर सिखा की हर तूड़ दे, हम पापी भीगत पाए।

अंदर नाम निदान सदा गुण सारई एकाटेक अगम मन तन प्रभ तारई लगा रंग अपार को ना उतारई गुरमुख हर गुण गाए सहज सुख सारई नानक नाम निदान हृदय उर हारई करे सो चंगा मान दोई गणत लाए अपनी नजर निहाल आपे लै हो लाए जन देह मती उपदेश विचों भरम जाए जो तुर लिखिया लेख सोई सब कमाए सब कष्ट इस्तै वस दूजी नाहीं जाए

मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक ओ भारा खौखट ओ पौरा नद गाय अष्टमार कौशक संगलाय पुनायो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सोत।

वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल तोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रख हो अरदास जियो पैज रख हो हर जन है केरी हर दे हो नाम निरंजन अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलाया धन धन कह साबास जियो मेरे सिख सुन हो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद अनहद वज है वाजे हर आप गल मेला वे तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेख हो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाना फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर भाणा अपना बह परवार सदाया मत मैं पिछै कोई।

लाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़ा पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबान हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल हर स्वर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोढ़ी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आन निवाया हर गुरह पाणा दी वड्याई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुन हो संत हो

महत दिवसरात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचा धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले

सतगुरु महाराज जी दी पावन हजूरी विच सुभाईमान साध संगत जी हुण समाप्ति है। बाजवा परिवार वालों वाहिगुरु दे पाणे विच गुरु का रुखा मिसा लंगर तैयार है। कड़ा प्रसाद दी देख लैण तो उपरंत संगतां ने लोड़ अनुसार लंगर हाल विच पहुँच के प्रसादा चाह पाणी छकन की कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।